வாயந்தன் பக்கத்தில் ஐ லவ் யூ. ये देखो ये देखो काली घटा शाही देखो ना।